नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वील की तरफ से। और आप सभी हम मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम से 100.7। दोस्तों आप सभी कैसे हैं और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? दोस्तों यस, हमें अपने संदेश के जरिए जरूर बताइएगा कि आप कैसे हैं, कल रात की नींद आप सभी की कैसे गई, आप सभी ने अच्छे से नींद ली है और कल आप सभी चर्च के लिए गए या नहीं गए? मेरी तरह चर्च नहीं गए या गए, ये सभी बातें हमें अपने संदेश के जरिए बताइएगा, जरूर बताना, ठीक है? क्योंकि मैं आप सभी का इंतजार करूंगी एफएम से ओए 100.7 पर दोस्तों। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने कामों में जाने के लिए आप रेडी हो रहे होंगे और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों? और यस, और सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए चले भी गए होंगे, निकल भी चुके होंगे। तो मेरे लिए, आप सभी के लिए ये दुआ है कि आज आप सभी का समय, काम, सब कुछ अच्छे से हो, बहुत ही खूब, बहुत ही आनंद और खुशियों के साथ दोस्तों। और जब भी आपको मौका मिलेगा हमें सुनने के लिए एफएम से 100.7 पर आप सभी का इंतजार रहेगा। आरजे वियली हिंदी के खंड पे आप सभी का इंतजार करेगी आपके संदेशों का दोस्तों। यस, और हम सभी प्यार भरे बातों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, है ना दोस्तों? तो चलिए, आप जो भी करेंगे काम अच्छे से करना। हम भी अपने इस आज के सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, तेरे बिना कहीं दिल ना लगे, कुणाल गांजावाला की आवाज में गाया गीत। यस, सुनिधि चौहान के साथ मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज का सबसे पहले खंड का गीत, यस तेरे बिन कहीं दिल लगता नहीं, बहुत ही खूबसूरत गीत कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल के साथ भी इन्होंने ये गीत गाया है। यस, सुनिधि चौहान के साथ भी गाया था उन्होंने ये गीत। यस, तो कौन सा वाला आपको पसंद आया? मुझे तो दोनों ही पसंद आए। तो आपको भी मेरी तरह ये गीत जरूर पसंद आया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। साजन का ये जो गीत है ना, जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमें ना अपने बचपन की याद आती है। रिपब्लिक डे एमओ, इंडिपेंडेंस डे एमओ, मतलब किसी भी ओकेशन में जब हम जाते थे तो इस मूवी को ना हम सिनेमा हॉल में देखते थे। वो भी बार बार। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी इस गीत को सुनाने से पहले। और यहाँ पर सबसे पहला संदेश इस खंड में आया है हाकते पा बिल्कुल हियर की तरफ से। घाकते पाहियान अर्चे वी एल नमस्ते, आपको भी नमस्ते। दिल का रिश्ता फिल्म सॉन्ग खा गाय था इला ए तेरेंग मई कन गाय था अंग ओ ये इन ओ गाय था दोनिया इतान ले गाय था तू तेतान कलाने हरोंती आ ओले चौन नंग पो वी ना हुन छतक मंग तुरिन दू सक जु दू दू सक ना कन लान से नी ओ चौन उसो मन है ना ट्रेन मैसेज कर दूंगा कि उसो मगे दी दोन जाम ओ पुलो दी तो सु आज भी ये सेगमेंट गाय था तू राहुल के नहीं तम तो गलो हित सु अपोई वंग वंग नहीं ए तू ना गलो चंग फु वेले ता अपन नाम ए मैं इधर रन प्ले तो जंग जंग इतना लिया लिया कर रन थंग ए ड्यूटी नाम ले रन दिया थैंक यू कलों लोग तो के ओ सोम जान ही ओ ले नई मौसी तक मैं हंसियां ही जान न थोड़े ही अपुर ओम्स अपुर ओम सुर जेलनिया लो नम रंग रो रन त्यानी कबन लॉम चीन अपन नाम चीन तक एम कहीं तेलुल एंज और चाल मो सोम नक पो नाम दे विन ना लो ठोकर ओ लुंग लेन ते का कन फल दोन म्या लो निया ओ कोम छुक जु लुंग लेन का फल दोन लो कोंग ते हियान आ जे वीएल आ जे मोम वीएल नंग चुआन का मैसेज इ लो छियार का मैसेज ही लो छियार जेरो ओ ए ते रेंग मे कोंग ते मैसेज रोन थोना का छियार लो ही ल ओम लो विन के शिया तेरो कोंग ते ओ चुआन मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश आया है। जाम हियान ओ कथलाक जोंग जोंग ने नरोन थोन वेला डिलीट ना रो जाम आजे सी एस सांग ते वांग वे कनी का अकुत ले वांग अनी का ओ हेलो आजे नमस्ते सुप्रभात अरोन दिया ओले नंगपो नमस्ते सुप्रभात ओ जाम चुआन आजे वेल इन I in rin lo la hi I lo lang nal bera ni hi Vi el bu ina I playlist Sami zong zong ka I duty bu inin in tan le Control room a duty de le Duty officer tan le uchi pia ngur dua da pa le Apu sang ma mati nu pa mission vien klang mi tan po O bu in duty nu am o ron di ani kak chian pa du M.M. mai hian ngai vong vong chin bok si a o vena te a che se wo apna kaam kare बहुत ही आनंद के साथ क्योंकि एफ एम सो ऑय पर मैं साथ हूँ ना उनके लिए आज भी उस समय ही आ ओम न मुन आ एफ एम सो ऑय रि मोय रून ही गाय छ थे लो से गति ए इस सवाल तो को जाम ये उस समय ही का चंदला उस समय एक ताम लो गई सो जाम ठूस वेल ते खमो जान मैंग मोयते हियान वाला नमस्ते ड्यूटी नाम ने रोंती बोका आपको भी नमस्ते मैंग मोयते आप कैसे हैं ओ तो किन सुख
kashok a clear loud lad. Chuan uchipia messenger on aron thenga ma seng or o kan khe khan relax te ang ka chiar swal palang ti ka lau box sia ka ve en talk ri phota I think wo abhi apne office ke liye ja rahe hain. Yes, to aap sabhi bhi apne kaam mein apne kamon ke liye ja rahe honge aur jaate jaate aap sabhi gaadi par bhi honge shayad aur gaadi bhi chala rahe honge. To agar aap gaadi chala rahe hain to mere dosto aap sabhi saavdhan se chalaiyega gaadi, theek hai? Hum nahi chahte hain ki aapko koi bhi kathinai aaye. To chaliye agle geet ki taraf chalte hain. Agla geet jaisa ki maine kaha tha ki aapko sunana chahungi Bala Subramaniam aur Gayagni ke bahut hi khoobsurat aawaz mein gaya geet dekha hai pehli baar sajan ki aankhon mein pyar. Kya aapne kabhi apne sajan ki aankhon mein pyar dekha hai? अगर नहीं देखा है तो आप देखने के लिए कोशिश कीजिए कि आपके साजन की आंखों में वो आपका प्यार उनकी आंखों में है या नहीं, ठीक है? इन दो तकते मिता खान हन एन उला मो मंगई ना का इन फूंगे मुलो तो जावे सुनी वो तो ना का प्ले तो ही चलिए सुनते हैं देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

यस, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार. यस, मैंने जैसे कि आप सभी से पूछा था कि क्या आपने अपने साजन की आंखों में प्यार देखा है या नहीं देखा है. मुझे अपने संदेश के जरिए जरूर बताइएगा. ठीक है, मुझे भी देखना है अपने साजन की आंखों में प्यार, पर कोई साजन मिला ही नहीं. केवन के एन बेचा के निमो के साजन मो के दु एम एम मई बिता खान मंगई न खा कता न मंगई न खा के एन बेचा के निक मु बेचा के नि मासे खतियांग खतियांग खा खतियांग मी खा गलतोंग बेसी लवा के नई बेसी लवा सुबह चा नंगनी चा इन नई दो नी मो इन नई ता नी जाम पोने नई आ तरो जाम पयेंगे पोने नहीं आ सुभागजान जिनके पास भी है तो आप देखने के लिए कोशिश कीजिए कि आपके साजन की आंखों में वो वाला प्यार जो आपके लिए है वो है या नहीं. आप जरूर देखिएगा. ठीक है, और तो हम अब चलेंगे अगले गीत की तरफ. और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को कि प्यार कोई खेल नहीं होता. यस, और प्यार का खेलना किसी के साथ भी मत कीजिएगा. ठीक है, यस, प्यार धोखा देना, प्यार में धोखा देना, ये सब अच्छी बातें नहीं है. ठीक है, तो चुआन आपके संदेश की तरफ चलते हैं.

माई डियरेस्ट उटीपिया की तरफ से संदेश आया है उटीपिया ह्यान कार्तिक अचंगिन अजय वियलिन मिन ओमे के अरुंती आ ओ है तियांगी अनुआम के ती सियार वो इन सू सियार हर देव देव कंती तो लवंग रोंती बाई ते रोंधन बाई ते कच्चियार चुआंग लवंग यस तो चलिए इस तरह आप सभी से हम बातें करते हैं इस तरह हम करते रहेंगे और यस एंथोनिया ओ की तरफ से संदेश आया है हे नंबर ये सेव वाला नीला उबो का अब वो एक हद मैसेज का दोन का दोन ना नहीं है लेकिन क्या आरजे विल वन प्लेन लॉन्ग वे नेक्स्ट का एफएम गाइड का जोंग जोंग डाउन और रोंटी नी ओले कन लॉन्ग लुट के ओ मिलों के था का वांगिन चुआन इसी तरह हमें सुनते रहना ठीक है एफएम से 100.7 पर अगर आप जब हमें सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका दिन ना बहुत ही अच्छे से बीतेगा क्योंकि हम ढेर सारी बातें करते हैं प्यार भरी बातें करते हैं हम दुख वाली बातें नहीं करते हैं हम हंसते हैं हम हंसी मजाक करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी ना अगर आप सुनेंगे ना हमें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जैसा कि मुझे भी आप सभी से बातें करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है यस तो आपको भी आपको जब भी मौका मिलेगा टाइम मिलेगा हमसे बातें करने के लिए तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज ये वियली हिंदी के खंड पे आप सभी का इंतज़ार करती है ठीक है यस तो चलिए एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी सभी से कि निभाने वाले के बीच दूरियां कभी नहीं आती ठीक है निभाने वाले के बीच दूरियां कभी नहीं आती जिनको रिश्ता निभाना होता है वो हर हाल में निभा जाते हैं ठीक है जिनको रिश्ता निभाना होता है वो हर हाल में निभा जाते हैं यहाँ सब कुछ नियत और विश्वास पर ही निर्भर करता है कभी पास रहकर भी एक दूसरे के साथ दूर हो जाते हैं कभी दूर होकर भी एक दूसरे का साथ निभा जाते हैं तो चलिए आप भी इसी तरह अपने रिश्ते को निभाते रहिए हम भी निभाएंगे ठीक है तो चलिए सुनते हैं प्यार कोई खेल नहीं इस खंड का अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार कोई खेल नहीं। प्यार कोई ऐसा खेल नहीं है जब भी उठाया और जब चाहा तो फेंक दिया। ऐसा मतलब ये सब करना अच्छी बात नहीं है प्यार में, क्योंकि प्यार एक बहुत ही सीरियस बात है। उम्र भर, जिंदगी भर का साथ देना प्यार है दोस्तों। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें धोखा मत दीजिए, और कभी उस प्यार के साथ आप मत खेलिए, ठीक है? तो तो इस तरह मुझे एक बात मतलब याद आ रही है कि जिंदगी इतना तो सिखा रही है, रिश्ता मतलब रिश्ता सबसे रखो, लेकिन ना दोस्तों उम्मीद किसी से नहीं। उम्मीद का मतलब आप सभी आपको पता है। उम्मीद का मतलब एक्सपेक्टेशन, ठीक है? तूने नामा, तूने लगा, तूने नामा यान ओ एक्सपेक्टेशन का नहीं लव तो जान इन लिमनी में ओ यस। तो चलिए अब हम अगले गीत की तरफ चलेंगे, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, दिल क्या करे। यस, और Elsa sai lo hian le van zing a changin ngai thla reng e tlan laklo type rem lo anti ang kha o lo om thin le mai FM zo oi te in na tho pa te in bai chung chungin in lo ngai lu in in lo ngai poi mo china mi te in ron be china mi te mo ni te khan min lo biak pe lo lai te khan nang ni chon message te bai chung chungin in ron thon bang bang china nuam te e kan pa chwai chwai zel mei china ni mo tu e mo ni ang ten mo OTP ya ang ten trong cơm tây hành thiam về ý là chân ơi từ rồi zam zam zam mà hiền anh chỉ biết chỉ biết mình sẽ chỉ chia sẻ nắng mà ý đang làm bị cắt anh nhà ô về chứ vô in chú chỉ biết mình đi làm mà in sms chia tour in này á cái lòng bụi sẽ ô cái playlist tour cao chỉ biết nên in phần đi tan sau in bani tan so ti lai tanga khan tak tak khan tak tak ka han chang mai se chang don box si la wa tro chuan i u so ma tan chuan phal leo i du le nang ma in than than sak mai don nia चुआन हितेंद्र दास जी की तरफ से भी संदेश आया है। हितेंद्र दास जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग आरजे जी। यस, आपको भी गुड मॉर्निंग हितेंद्र दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें संदेश भेजने के लिए और हमें सुनने के लिए FM जो 100.7 को। यस, और हम भी आपको इस FM जो 100.7 से आपको बहुत ही ढेर सारा प्यार भेजते हैं।

संगीत के जरिए, ठीक है। यस, हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही आनंद से, खुशियों से भरा रहे और उत्सव महियान में से चरण थन ले आ। आज भी अजाम खान सिग्नल ओमलाओ न आ ओम से तिखा मिनती आ सिग्नल ओमलाओ न तेचु सैलो अमा तेखुआन कार्टिप आ चौ कंगाई थी ना तु न फे चुन फो न चंग पोन कंगाई थे तो अनिया लौ चंग न सरो से अति ओ जाम लौ श्यामो चु ओके वाल हियान आजे आजे ओ वी एल के आई खा नि मेल खा एन रो यू पलु तुक मीन ऊ बे खंग लांग सो आर जे ऊ बी एल जा मले उठी बे ले यू ऊ सो मते ते लविन इ तान के लाने और अरन ती ने ओके वा ले हियान। यस, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, माय लवली लवली दोस्तों, आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे और हमारे साथ FMZO 100.7 पर जुड़ते रहे। यस, और अगर आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप एक बहुत ही एकदम सावधानी के साथ गाड़ी चलाइएगा, ठीक है। यस, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी कठिनाई आए आपके साथ। यस, आपको कोई भी मुश्किल परेशान ना करे। तो चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए। चुआन उत्सव पो इन थो ना तिखान ओ चुआ दे लो थोकला चुआन मोटोर ते इखल ओ इखल पा तिखान लो फीम खुरला तरो कन फल लो निया ओ थिल एंग मोनी पल तो पल ओ तो पल तिखा ओ ओले। तो चलिए फिलहाल सुनाते हूँ मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को दिल क्या करे आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप सभी को पसंद भी आ रहा होगा। और मैं इंतजार कर रही थी जाम का संदेश मासे जाम इताई ब्रेलु तुका कहाँ बनतो लो से एक कॉपी पे जेल मौके लौटिया मासे निलाओ तो रोजाम इताई ब्रेक एम आई का हाक दोन लौट से हमारा समय खत्म हो रहा है दोस्तों, क्या करें। दिल तो करता है कि आपको यूं ही गीत सुनाते रहे, आपसे बातें करते रहे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बातें करना। क्या आपको भी मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? तो आप ज़रूर अपने संदेश में लिख भेजना, हमें लिखना कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है एफएम से 100.0 को सुनना दोस्तों। यस, तो आप सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया होगा, ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। के चुन और ब्रेकफास्ट ब्रेड क्या कल या करी लाम तो तब ता नगे चुन इन्हें तो मैं थे बोगा, ठीक है। और अपने काम के लिए आप निकल भी चुके होंगे, जा भी चुके होंगे, उठी भी आगे ऑफिस पॉइंट लेंगे ले दें तो मैं थया पंक्चुअल में पंक्चुअल लुतुक मई खानिया मोम चुफांगिन कन गाय सांग ए मेमा ऑफिसर जोंग जोंग आचन कन गाय सांग बेरंग चुआन कुंग ते ह्यान क उजा म चुआन यू अलो ठीक वेल अलो यू खजु ठीक लु सुसे अनि ठीक फाक अनि लो अरन दि वेल अनि कुंग ते ह्यान ओ जाम चुआन उचिपिया ह्यान ngo cha pui kara na thokin maria kin om ila zo oi ngai tha ila aje veli nui ri or or hi han she ta bok ila ha po kan she lo ang a ron de veleni aleng po cha ni se alom ome or o zama for the last इस खन के लिए जाम हेन आज वेल इमो उची पे अन इन पनि तान चो दिया इन निथे इन निथे ओम लोम अमा उची पे हि लुंग आ गो जाम छर लो मयांग इ हुन के नै तो लो के छर स्वाल दोन ले तीन के शिया तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीते, बहुत ही खुश और आनंद से। और मैं वापस आऊँगी दोबारा अपने हिंदी के घंट को लेकर 11:20 पर, ठीक है। 11:20 यानी सो ओ करुण गिर ले दोन। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है, मुझसे बातें करना है, ठीक है। तो आप भी अपना अपने काम अच्छे से करते रहना, ठीक है। तो चलती हूँ, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है गीत के साथ। तो इंतजार रहेगा 11:20 पर, तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। और जिन्होंने भी अभी खाना नहीं खाया है ना, तो उनके लिए आज वीली की तरफ से जो दुवे को ओ नंग पो ओ जाम

हेलो नमस्ते आप सभी को आरजेवी की तरफ से, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7। दोस्तों, और आप सभी को लाइव शो प्रोग्राम पर आरजेसी स्थनपुई के साथ कैसा लगा? दोस्तों, जरा हमें भी तो बताइए कि आपको कैसा लगा। यस, हम आपका इंतजार कर रहे हैं एफएम 100.7 पर दोस्तों। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा, और ज़रूर बताइएगा अपने संदेश के ज़रिए कि आपको आपकी दोस्त आरजेसी स्थनपुई के साथ उनका लाइव प्रोग्राम, लाइव शो प्रोग्राम कैसा लगा। ठीक है, यस, तो चलिए आप सभी का इंतज़ार रहेगा मुझे भी आरजे वेली को, और आप सभी अपने काम अच्छे से करते रहिए, और साथ साथ हमें मिस भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम भी आपको मिस कर रहे हैं। जामते उठी पियते उसोमते कुंगते ते मेंगमोयते ते वी रियली मिसिंग यू। यस, तो आप सभी का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिलहाल हम इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, कसम खा के कहो। बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू और अलका यांगनी के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए इस खंड का सबसे पहला गीत। यस, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को जरूर पसंद आएगा। ठीक है,

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को कसम खा के कहो कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आ रहे होंगे, आया होगा दोस्तों। यस, और जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी का समय दिन बहुत ही अच्छे से बीते हमारे साथ, अगर हमारे साथ नहीं तो किसी के साथ भी हो अच्छे से बीतता रहे दोस्तों, ठीक है। और मैं चलना चाहूंगी अगले गीत की तरफ, और अगले गीत के सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी। मैं हर रोज तो कहती हूँ कि, लेकिन मेरे दिल में ये हमेशा ये बात, यस, हमेशा ये बात आती है कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। यस, मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है ना दोस्तों। हर मोड़ आसान नहीं होता, यस, कभी भी हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, है ना दोस्तों। ये बात तो सही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं मिलती, पर हम दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, पर हम जब जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े, है ना दोस्तों। अगर हमें मोहब्बत किसी से भी नहीं मिलती तो क्या हुआ, हम मोहब्बत तो बांट सकते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने दिल की बात सुनिएगा और जितना हो सके ना दोस्तों आप मोहब्बत बांटिए, ठीक है। और मैं तो बांटती रहूंगी अपनी मोहब्बत। मैं अपनी मोहब्बत को अपने जेब पर कभी नहीं रखूंगी, ठीक है। मोहब्बत एक बांटना होता है, प्यार बांटने की चीज होती है दोस्तों, ठीक है। आपके पास जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, वो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ भी बांट सके। और अगर आपका दिल सच्चा होगा ना दोस्तों, तो आपको जिंदगी में बहुत ही ज्यादा, मतलब ढेर सारी खुशियां मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दोबारा हमारे साथ आरजे वीएलई के साथ हिंदी के खंड पे दोस्तों। और हमारा समय है पूरे 12 बजे तक, ठीक है। तो आप सभी अपने अपने कामों में बिजी होंगे लेकिन मुझे सुन रहे होंगे। यस, अच्छा, मेरे दोस्त उठी पे अभी अपने काम करने के साथ साथ मुझे सुनते हैं, ये तो मुझे पता है। उठी पी पोन अन्नथो लाइन ऑफिसा मिलोंगाई था रिंग चीन दी किशिया आ मैसेज वो रोंथन रिंग चीन लो मासे, हमें मालूम है कि वो हमें सुनते हैं और चुपचाप मुस्कुराते हैं। और तो चलिए, फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी जाने दिल में कब से है तू, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ, ठीक है। और जामते हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश पहुंचा है, लेकिन दोस्तों, यस, जाम ले हितेंद्र दास जी।

तो मेरे प्यारे दोस्तों कि यस आप सभी को कैसा लगा लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में गाया गीत जाने दिल में कब से है तू. लेकिन ना जब आप मुझसे पूछेंगे ना यस जैसे कि अजामते उचेपियते कुंगते ते अगर वो मुझसे पूछेंगे कि जाने दिल में कब से है तो मैं तो मतलब जवाब दूंगी कि मेरा आंसर होगा जब से FM जो 100.7 है. तेरो जाम FM जो ओए FM जो ओ ही जो ओम लो से चन शायद पो कहीं से ओम से लवा तेरा ओ तेरो जाम. तो चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से जो संदेश आया है बहुत ही लंबा सा संदेश है और वो लिखते हैं कि RJVLK2 इथोपुई इंग्लिश RJMO मिजो RJMO FB आ अनलाइफ यान थीर चाक न पोक नहीं दो लो इंडी सेगमेंट भी का छून लमा FB लमा अनलाइफ थे लो रंग ही कनिंग तो

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा? इश्क हुआ, कैसे हुआ, जैसे हुआ, अच्छा हुआ, है ना दोस्तों? यस, हमारी भी मुलाकात आप सभी के साथ जैसे भी हुआ, अच्छा ही हुआ, है ना दोस्तों? यस, तो मोरिस एलर क्या दे ही अताई ब्रेक हो भाई। हम उनका इंतजार कर रहे थे कि मतलब इस इश्क हुआ कैसे हुआ गीत के बाद उनका संदेश पढ़े, लेकिन अभी तक वो टाइपिंग कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, हमारे पास 12 बजे तक का समय है, उनका संदेश जरूर पहुंचेगा, हम इंतजार करेंगे। तो उससे पहले मेरे दोस्त जामा जामा मैसेज और थिंग यस, हम पढ़ेंगे जामा का संदेश मेरी तरफ से जो भेजा गया है। और अगले यस, अगला गीत मैं आपको क्या सुनाऊंगी दोस्तों? आपको क्या सुनना है? आपको क्या पसंद है? आप तो फरमाइश भी नहीं करते, गीत फरमाइश भी नहीं करते। खैर, जो भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको गीत जरूर पसंद आएगा दोस्तों। यस, तो चलिए मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी, दिल टूटने वाला गीत। ठीक है, हर इंसान को मोहब्बत करने करने की इजाजत है, लेकिन हर कोई इंसान को ना दोस्तों मोहब्बत नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए हार्ट ब्रेक सॉन्ग सॉन्ग तितान नेक्स्ट सॉन्ग है। ओ यस, और फिलहाल दोस्तों, इस गीत के सुनाने से पहले मेरे दोस्त जामिहान क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। आज भी एल चुक्स थियांग लिम ले मुआ थियांग लिम चू का फल बेक ओ मासे रम रे खम चिंचू पेट दे लाउ दूर चू चू थू पेक त्याम ओ चू चू थू पेक त्याम ने मसवेल अन अनि वी कुंग लेर थका रिल रुहन मुआर न सज्जिया चुमो अम मुआर जोगिन मो अरे रूही अम मुआर मो विक्टोनी करिनी इप्ले ले दूर का कथो पुईते पनी पु समोजी ले पु समोजी तान ले

दोस्ती का संबंध निभाए हमेशा, यस, और ढेर सारा प्यार देना मेरे दोस्त जामा को, यस, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे बहुत मिस करती हूँ. और दूसरा संदेश आया है मोरिस अलारख्यांगते की तरफ से. इप्लेते मिस अमोचिन ते तके मानी खान का मोचे आ इलाउनुई लियानिन इलाउ लेटलिंग खोप भाई कमाल का खान इतलाना चान इखल फिल्म खोर थ्याम लो तो कनिया ओ कतियांग दूर खानी ए खोया ने ओ मिन मोले ओ तिल दीपा चान टाइप चक थे लो खोया ये मिन मुआ मोरिस मो मिलो गो द जे चान उसो महियान विस कलो गाय थावे रे ने ए रंदियानी वन टॉयफेल तक एम ओले उसम पो ट्वांग तकिन ना खालो थोकजे ला चुआन नाम द विन हुन लंग मांग जेरो चा मिलो गा खारेंग बोग्रो. यस, तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, जिए तो जिए कैसे जिए, मेरी तरफ से अनुराधा पोलवाल और कुमार सानू और बला सुब्रमण्यम की आवाज में गाया गीत है दोस्तों, जिए तो जिए कैसे जिए. और यस, जैसे कि मैंने कहा था कि दुनिया में हर किसी को मोहब्बत करने का, प्यार करने का मतलब इजाज़त है, लेकिन हर इंसान को प्यार नहीं मिलता, वो मोहब्बतें नहीं मिलती. इसलिए जिनको मोहब्बत मिली है, प्यार मिली है किसी की मतलब किसी के तरफ से, तो वो इंसान बहुत ही खुश नसीब है कि उन्हें किसी की तरफ से प्यार मिला. लेकिन आप ये मत सोचना कि जिंदगी ख़त्म हो चुकी है, मतलब हो गई है किसी के प्यार ना मिलने के कारण. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको ना ठीक समय पर आपका हम सफ़र साथी इस ज़िंदगी में ना आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है. ये मेरा आरजे वीएली का दावा है, ठीक है. अहुना तक चुआन को पूछा दे मैं खा इन होंगे ये यंग अहमो तो ते पोखा लव इन ओ वान ने खा लव इन तीन लिया लिया उला मो लव इन ती मोल उला ते चुआन न सतक इन लव इन मांगे तोन सेल पोकुला मो मांगे नहीं तो ते खान. ओले, तो चलिए फिलहाल सुनते हैं मेरी तरफ से जिए तो जिए आप सभी के नाम.

जिए तो जिए, कैसे जिए दोस्तों, है ना। लेकिन किस्मत में नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन वो किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, दिल में तो हमेशा वो रहेंगे ना दोस्तों। तो चलिए, हम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं या तो चलिए फिलहाल जो भी हो, रोमांटिक होना बुरी बात नहीं है, प्यार भरे बातें करना कोई बुरी बात नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए, हमारा समय भी खत्म होने वाला है और मैं आपको एक गीत के साथ अलविदा, यस मेरे कहने का, यस अलविदा कहने का समय आ चुका है और अनिमो मोरिस कवन ओइलो ए आई आर कोंगलमा इतलान छौ तुर खा करोन आउ चे अलो मा से शपन तलो अनियांगे कर्म सांजे तोपनीगे निलाई तो चन्नी खा कच्यांग चा तो लो स्कूटी मिंग ले नंबर पो कशे रुकर अन्या नंग मा इनी स्वान अनी ले एंग कोर गे कहाग ले हंसुई ले ते ले के मागलो निलो मै थे बोका चांग कुंग ते ह्यान का उलल जामा ह्यान नुते लियान पुई अने nuila tam tekin an tuklao alem to eh kung te arjemon vl pay to an tuklao le zwal kapu ke wala na munom ati lutuka athir do sel ron tiani kung te hian zam ani za thang lo etro ale और मोरिस सहन लौटा है मैं का, लेकिन हमारा समय खत्म होने वाला है दोस्तों। मैं आप सभी को एक गीत के साथ अलविदा, मेरे अलविदा कहने का समय आ चुका है दोस्तों। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगी दोबारा 2:35 पर, ठीक है 2:35 आदाई करो ले तो दोनों नीता या दई नी तो चुमो चुन लमा दई। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं एक गीत के साथ अलविदा कहना चाहूंगी जो है वी मामा चोंगते की तरफ से भी संदेश आया है कलोंगाई खाए ओ नलदे उदे उलो प्ले रो अरोंतिया ए कनबन लोम तक एम ओ अचुंगा कोरवार इहा वेस्पांगत ओले तो चलिए फिलहाल मैं चलूंगी आप सभी को आखिरी गीत सुनाकर, और जाते जाते दोस्तों यस मैं आपको गीत सुनाऊंगी इस खंड का आखिरी गीत जो है सुकून। यस और सुकून गीत सुनाते हुए मैं एक बात, दो तीन लाइन कहना चाहूंगी सुकून के बारे में दोस्तों, कि नरिश्तों का नाम है सुकून में, न रिश्तों का नाम है न कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है। वो खुश रहे कभी भी यही दुआ है मेरी, उसकी खुशी में खुद को भूल जाना सुकून है मिलना और ना मिलना तो किस्मत की बात है। हर ख्वाब में उसका आ जाना सुकून है। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। यस कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन आप सभी के लिए मेरी तरफ से था। तो चलिए सुनते हैं सुकून, इस खंड का आखिरी गीत
और मिलते हैं 2:35 पर, और आरजे विली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बेकू ओ।

हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 दोस्तों और आप सभी का दिन कैसे बीता और कैसे बीत रहा है दोस्तों यस हमें अपने संदेश के जरिए जरूर बताइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा दोस्तों किसी के साथ किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया होगा है ना इन हाउपी देखा इन लव नहीं एम लवंग चुमो यस तो ना हेन अर्जेन नुंग नुंग दे मिन हो सन दोन मे का त्वा तकिन हो से अनि पो और हम भी अपने इस आज के आखिरी खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ दोस्तों और चलिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को सतरंगा अरिजीत सिंह के आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और मुझे आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों और गीत सुनाने से पहले ना दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी बताना चाहूंगी दोस्तों यस एक बात कहनी है आपसे बहुत ही खूबसूरत बातें पहले भी मैंने आपको बताया है कहा है आपसे कि सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है आप इंतजार कीजिए उस अच्छे पल का अच्छे समय का दोस्तों आपको सही वक्त पे सही टाइम पे आपको जरूर मिलेगा जो आपको चाहिए जो आपका दिल चाहता है ठीक है और इसके लिए आपको सब्र करना है ना तो कहते हैं कि हर चीज वक्त पर ही खूबसूरत लगती है दोस्तों अगर वक्त के पहले अगर वो चीज हमें मिला ना तो वो खूबसूरत नहीं बनता ना वक्त से पहले कुछ अपना होता है ना वक्त के बाद कुछ ठहर पाता है इसलिए सब्र रखना सीखो दोस्तों आप सभी मैं भी क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो एक दिन जरूर मिलेगा और जब मिलेगा बेहद बेहतरीन मिलेगा ठीक है दोस्तों और बस खुद पर यकीन रखो दुआओं को साथ रखो और वक्त को अपना काम करने दो ठीक है तो चलिए हम भी चलते हैं अपने इस आज के हिंदी के आखिरी खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से सतरंगा आप सभी के नाम

दोस्तों, सतरंगा अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यार भरा गीत, जिस इंसान से वो इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा वाला गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी अरिजीत सिंह के ही आवाज़ में गाया गीत, तुम ही हो, तुम ही हो, यस आप ही हो जिसने हमारा दिल चुरा लिया। इन सब से ना मुझे एक बात याद आ रही है कि प्यार तो उनको मिलता है दोस्तों, प्यार तो उनको मिलता है जो धोखा करते हैं, प्यार तो उनको मिलता है जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं। दिल दिल से प्यार करने वालों को तो सिर्फ धोखा ही मिलता है। आप मेरे बात से सहमत हैं या नहीं? तो चलिए, आपके सहमत से मतलब आप सहमत हो या ना हो, मतलब किसी के लिए तो ये बात सहमत हो सकती है ना दोस्तों? तो चलिए फिलहाल सुनते हैं, तुम ही हो, मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और यस, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप सभी के प्यार भरे संदेशों का, टाइप में का। तो चलिए फिलहाल गीत की तरफ बढ़ते हैं, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत तुम ही हो, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को दोस्तों पसंद आए होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा और आप सभी अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको गीत सुनाना चाहूंगी। यस, यही होता प्यार। और इस गीत से पहले मैं आपके संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। लल दिन पो याखियान आरजे प्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लौंगाई थावे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कछानते वेंगशंग शंगमी ते तान अरोंदी अनिल लल दिन पुया ह्यान ओले कनलोम लुटु के ओल दिन पुई, हमें सुनने के लिए और अपने दोस्तों के लिए और आरजे आरजेस के लिए गीत यस डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ललदिन पुया। और हितेंद्र दास जी की तरफ से भी संदेश आया है। हितेंद्र दास जी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून आरजे जी कहकर आपको भी गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास जी। और कुंगते ह्यान चंचिन बु कछियार मेघ उजा मचू इंट्री मेघ थुंग कटलुक लौ है मई अनि जों सुम अललुत हेउ हेउ मई सी आ अरुंदीनी कुंगतेन कुंगते नंगते चू लाक लु ngai lawin idong zo gang zu tro albi ren le hen rjvl i segment to balaw ni reng mai ingai omle don le mai ple le tur kha i tan liao liao o aron ti a kalom lu to ke o chan mere dos zam ki taraf se hello rjvl namaste good afternoon yes aap ko bhi zam o rjvl iti ti le inui rimoi hi chu o nga ngai tha kham ni hi a om don chang lo ani hi segment top na ber ala ni zui even ngai om le don tak re real lovin lo duty twai ang che o itel lovin o itel lo chuan fm zo o ngai la tu te hi sera mo thur the me lo an ya do om no next song itan so arantini ole nang po do om pa ओले तो चलिए फिलहाल गीत की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है। यही होता प्यार मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं चाहती तो हूँ कि आप सभी से यूं ही बातें करते रहूं, लेकिन दोस्तों हमारा समय ख़त्म होने वाला है और आप सभी को एक आखिरी गीत के साथ अलविदा कहना चाहूँगी दोस्तों। और आज फिर एक बार आप सभी को मैं दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आप सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के संदेश के लिए। आप सभी अपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमें प्यार भरे संदेश से खुश करते हैं, हमारा साथ देते हैं दोस्तों। और यस, जो भी हमें सुन रहे हैं इस FM जो 100.7 को, आप सभी को हम दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं हमें सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए दोस्तों। और स्पेशली जो हमें संदेश भेजते हैं उन सभी दोस्तों के लिए तो बहुत ही ढेर सारा प्यार हम भेजना चाहते हैं गीत के जरिए दोस्तों। तो जब तक हम नहीं मिलेंगे ना, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी उदास हो, सैड हो दोस्तों। कभी रोना नहीं, हमेशा जब भी यस कहीं भी आप अपने लाइफ में अगर कुछ अकेलापन या कुछ ऐसा महसूस करोगे, अकेलापन महसूस करोगे, तब हमेशा सोचना कि आपकी दोस्त राज्य वियली है। तो ये याद करके आप FM 100.7 को ऑन कीजिएगा, हमें सुनिएगा, तो देखना आप ज़रूर हंसोगे, ठीक है? अगर आपको हंसने का मन भी नहीं करेगा ना, तो आप ज़रूर हंसोगे, ठीक है? यस, तो चलिए मेरे जाने का समय आ चुका है और मैं आपको बहुत ही प्यार भरे गीतों के साथ अलविदा कहना चाहूंगी। और एक चीज, मतलब एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूंगी, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आज कि निभाने वालों के बीच दूरियां कभी नहीं होती, ठीक है? इंतियाम तो ते आहियान मो इंचन नहीं आओम थे लो नी दीना ने चुमो इंतियाम तो चु इंतियाम तो जिनको रिश्ता निभाना होता है वो हर हाल में निभा जाते हैं। यहाँ सब कुछ नियत और विश्वास पर ही निर्भर करता है दोस्तों। कभी पास रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी दूर रहकर भी ना दोस्तों, एक दूसरे का साथ निभा जाते हैं, ठीक है? अगर आप निभाने की बात करेंगे ना, तो आप मरते दम तक निभाइए, ठीक है? तो चलिए इजाजत लेना चाहूंगी आप सभी से आरजे वियली इस आखिरी गीत के साथ, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगी। और जब तक हम नहीं मिलेंगे इस FM 100.7 पर, आप सभी अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, ठीक है दोस्तों? ख्याल रखना अपना और हमेशा खुश रहना, ठीक है? बस एक बार जाते जाते आप मुस्कुरा दीजिए, हन्नुई लुकते ऊ हन्नुई सांगते ऊ ठीक है? चलिए मैं वापस आऊंगी जल्दी से आप सभी से बातें करने के लिए, तो चलती हूँ आरजे वियली की तरफ से। बाय बाय, टेक केयर, बेकू ऑल।

0: Tak sorry lo ngay lang oh.
1: Kanagleta. पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनबीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाणी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थीं और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एजो के फिल्म्स ओवर 100.7 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे मासूम तलवांगी और इस खंड पर भी हम हिंदी के मस्त मस्त गीत फिर से सुनने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप हमारा साथ आज के हमारे कार्यक्रम के अंत तक देते रहेंगे, 10:30 बजे तक, ठीक है, हमारे साथ देते रहना। और शुरू करते हैं इस खंड को आसमां मूवी के गीत के साथ और ये है

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

आप सभी 1942 लव स्टोरी मूवी का गीत सुन रहे हैं और यहाँ भी कुंते का एक बहुत ही मजेदार रिप्लाई मिला है. अभी कुंते हैं जिन खाने ने भी था संग में दोनों में कटी है रिप्लाई मोइल तुक तक मेरो तो ना मो कंचिया रंगे नंग सुई लियां तो ठंस के गाय लो और अंतित तब में ने मो पुम्रो अंगजों पोना कुमंगजों तो पंडी ए हुआम की बिफेक थे. एनीवेज इति लोगों में रहेंगे कि ये जो अगला गीत हम सुनने वाले हैं मोहब्बतें मूवी का गीत है चलते चलते और ये गीत हम खास करके विकुंते के लिए डेडिकेट करेंगे. ठीक है तो चलिए सुनते हैं चलते चलते और 6 बजे से आपका साथ देने के लिए आपके आरजे जो दीदी आएंगे और हम वापस लौटेंगे 7:30.

FM जो 100.7 पर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे मसूम चौहानी। आपने भी आरजे जोदीन के साथ अपना वक्त बिताया था और अब हमारे साथ आधे घंटे के लिए हिंदी फिल्म गीत सुनने के लिए आप सभी फिर से तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इस खंड को हम शुरू करेंगे एक बहुत ही मजेदार गीत के साथ। एक विलन मूवी का गीत है और ये है गलियां।

मूवी एक विलन मूवी से था, यहाँ ललित रुपया फिल्म को रियलाइज से मैसेज मिला है और इन्होंने लिखा है अर्जे प्ले ले तू खा नंबा तान ले लोगा सब सॉन्ग तान ले अर्जे जो सॉन्ग तान ले कच्छान ते बेंग शंग शंग मी दान रो दिन दल दिन पुया फल कोन वेंग लाई एफ एम गाय सांग एम एम तू रो दिन दी हेलो मम चीन खोप मै चुआन इन हितेंद्र दास जी से भी हमें मिला है और इन्होंने लिखा है हेलो नमस्कार जी आपको भी नमस्कार गुड इवनिंग राजे जी गुड इवनिंग सर इन्होंने और अगला की जो हम सुनने वाले हैं ये हितेंद्र दास असम जी के लिए और ललदिन पुया फल कौन वेंग लाए के लिए हम डेडिकेट करेंगे और ये तेरे नाम मूवी का गीत है ओढ़नी

कहना ही क्या, बम्बई मूवी से था। और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं, ये पुकार मूवी का गीत है, सुनता है मेरा खुदा। और ये गीत हम आप सभी के लिए, आप प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए जाता है।

सुनता है मेरा खुदा पुकार मूवी का गीत है। और दोस्तों अब हमारे जाने का समय आ गया और हम वापस लौटेंगे 8:30 बजे, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे का गैप रहता है और उस पर आप हमारे मनपसंद हिंदी फिल्मी गीत सुनने वाले हैं। और इस खंड को समाप्त करने के लिए हम सुनेंगे मिले हो तुम, और ये गीत फिर से आप सभी के लिए।

FM Zoo 100.7 पर आप सभी का दोस्तों हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी आरजे मासूम क्लोई। आपने भी आरजे अली के साथ अपना वक्त बिताया था और लेकिन इस खंड पर आप हमारे मनपसंद हिंदी फिल्मी गीत सुनने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ये वीर ज़ारा मूवी का गीत है।

कपूर मूवी का गीत है और यहाँ हमें दिल को फल गनाई से खत मिला है और इन्होंने लिखा है आरजे प्ले ले तो खादम माता ने लोंगा छवे जों सों तान ले आरजे जों सों तान ले कछियां ते बेंग शंग शंग मीते आरसी लोंगा मोन सो वाल पुया रिन मोया आज जिना लोंगा ते पुया ते तान रोंती आले दिल को फल को वेंग लाई एफ एम आई नाइ सा एम एम तो तान रोंती ने ते लोंगा छिन खोप मेरे दिन पुया तन गाय थाग ले दूर ही पिक तक इन दिन पुया तान कन लाने और ये गीत है रॉकस्टार मूवी से।

आकाश फनी एजो के फिल्म जो 100.7 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपकी आरजे मौसम चौंगी। आपने भी आरजे एली के साथ अपना वक्त बिताया था और अब हमारे साथ इस आखिरी खंड के लिए वक्त बिताने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इस खंड को हम शुरू करेंगे हम दिल ले चुके सनम मूवी का गीत।

आप सभी हम दिल दे चुके सनम मूवी का गीत सुन रहे हैं तड़प तड़प के, और यहाँ आपके मैसेज भी आए हैं लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले एक और गीत सुन लेते हैं, और ये कहो ना प्यार है मूवी।

कहोना है प्यार, कहोना प्यार है मूवी का ये जो आप सुन रहे हैं वो है ना तुम जाना ना हम। यहाँ लल दिम्पू यफर को वेनाइ से मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है आज ये प्ले ले तू खनंग माता ले लोंगा थवे जों सुंग तान ले आज जों जों तान ले कचांते वे शंग शामी ते तान रंती आ चंजे ल जाम ही आनीन आज सोम तो नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग आज एम एस टॉन टेकिंग होम से और नेक्स्ट सॉन्ग इतान ले आज बी एल इतान से एल्बम टूर इन और रंतिया। और यहाँ दुर्गेश जी से भी हमें मैसेज मिला है, इन्होंने लिखा है गुड इवनिंग आरजी सिस्टर नमस्कार जी आपको भी नमस्कार। और ओमेगा साल पे अहन लार और थांगा मासे ही गंदी सह गंदे लोग मान आपो है नोट लंग तो अलग कशा मिल रोशन थियाम शाम दोनों मासे कन्हैया इलाक ले तुरही तान्या और जावे कंटिया ओ एमएसटी दम छावो पसंद में नेशन मी वरे वे रोंटी ली कन्हैया पहुंचे लोगे सोने भी कुंते यानी ओए मैसेज Then look to Karon Tonaka Church of Lo Mang. Oh, hey, so me patty an incarnate till Vera Nika ringa. Tell of Ming Emil of Shetiam Donia. Oh, to Chili Angle Git Ki or ye ye hem Mumbai Mary Jan Movika Git, eh? Mira Chand Mujhe Aya Henderson.

मुझे आया है नजर, ये है मुंबई मेरी जान मूवी का गीत था। और यहाँ दुर्गेश जी ने मैसेज भेजा है और इन्होंने लिखा है 5 बजे से लाइट बंद हो गया था, अभी मोबाइल ऐप पर काम को कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला गीत जो हम सुनने

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का ये जॉब सुन रहे हैं वो है हो गया है तुझको प्यार सजना। और दोस्तों अब हमारे जाने का समय आने वाला है और क्योंकि ये हमारा खंड 10:30 बजे तक का ही है और आखिरी गीत होगा कयामत से कयामत तक मूवी का गीत ऐ मेरे हम सफर। और ये गीत हम आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए डेडिकेट करते हैं ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, सभी को शुभ रात्रि।